मानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चिंत न पेव। आप अपनी बुद है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखन

अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पज खान बहो रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर अकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भाव, आद जुगाद स्वरूप सुयम भाव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो बारो असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकटने है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्टिया रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मुहर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शव सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास दे ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, सर्व ठौर

सत्य नाम सत्य नाम हरि बोल वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोल सत्य नाम सत्य नाम।

सारा संसार कुल खलकत कुल दुनिया मैं मेरे बिच लगी हुई है ऐ मेरा है ऐ मेरा है ऐ मेरा है।

लेकिन साहिब कहंदे ने ऐ मनुख ऐ बंदिया कदी ये भी आखिया कि सब कुछ तेरा है, मेरा ते है ही कुछ नहीं। जियो पिंड सब दिसदा ते तेरा दिता होया शरीर है, तेरे दिते हुए श्वास ने जब तक तू चला रहे हैं वो चल रहे हैं। ते जदों तू चाहे चलदे हुए श्वासा नू संगल पा के रोक सकने, ते फिर साडा ते नाना हो गया सारा कुछ। जियो पिंड सब तिसदा सब किच है तेरा।

आखिरी वचन सुन लैने। सिफर लगते गए, एक हजार हो गए, दस हो गए, लख बन गया। और सिफर लग गए, मिलियन हो गए। और सिफर लग गए, वादे चले गए। एक दिन बैठा बैठा सोचता, कहता वाह, बड़िया बड़िया कीमती चीजा मेरे खुदा तू छुपा के रखी है ने। बोलो सिरे, कहते मेरा बड़ा कमाल दा मेरा रब। सिफर इतने हो गए, हुण सांभे नहीं जांदे। बड़ा वड्डा शाहूकार बन गया, बड़ा वड्डा सेठ हो गया, नौकर चाकर हाथी घोड़े लश्कर बड़ा कुछ। एक दिन बैठा है, हुण बुजुर्ग भी हो गया, 65-70 साल की उम्र भी हो गई, हाथ विच माला फड़ी बड़े कीमती पत्थर दी मोतियां वाली माला, घुमांदा घुमांदा इहदे मन विच आ गया मन, कहिंदा मेरे खुदा तेरे कोल मैं मंगण गया सी ना, ते तू ते मैनू एक ही दित्ता है, बाकी तो सारा मैं इकट्ठा कीता है। बोलो सिरे, मैं आ गया, क्या कर लिया, ओही मैं।

कहने लगे, क्यों ना मैं तेरा एक वापस करा, बाकी तो सारा मैं इकट्ठा किया, तो रुपया फिर पहुंच गया उथे ही जिथे नमाज पढ़ के सारा कुछ प्राप्त किया। अल्लाह अल्लाह करी जांदा, कहिंदा मेरे खुदा आवाज आई, आखन लगे फकीर साईं हुण की लैण आया, आखन लगा मेरे मौला हुण मैं लैण नहीं आया, हुण मैं देण आया। बोलो श्री, किते साडी हालत इदां दी तां नहीं, किते असीं देण जोगे की आ गुरु नूं। जिस गुरु ने सानू गिदड़ा तो शेर बनाण वास्ते, सिख नूं शिक्षा दे के गुरसिख बनाण वास्ते अपना परिवार तक कुर्बान कर दिता, उस गुरु नूं असी की दे सकने आ? सतसंगत बोलो सिरे, असां तां गुरु कोल लिया ही नहीं। आखण लगे पहले भिखारी बन के आया सी, हुण दाता बन रहे। आखण लगे की देण आया? आखण लगे मेरे मौला मैं ते तेरे कोल बड़ा कुछ मंगण आया सी, तू मैनू एक ही दिता, इस करके एक अपना वापस लै लै, हुण मैं बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। बोलो श्री, मेरे कोल मुक्कण वाला नहीं। आखण लगे अच्छा, बड़ा सियाणा हो गया, चतराई सियाणपा कितै कम ना आईए, बहुती चतराई बहुती सियाणप बहुती चलाखी, साहब बाणी विच कहिंदे ने ये तेरे कम नहीं आउणी, मता कितने भुलेखे विच होवें तू, मता कितने गलत फहमी विच होवें तू। आखण लगे सोच लै, कहिंदा मैं सोच के ही आया। कहण लगे ठीक है, वापस लै लिया, चला गया। हुण सतसंगत जिहड़ी एक रूपी बरकत सी उह तां वापस कर गया, ते पिछे की रह गया? उह सिफर किन्ने क दिन रहने सन, हौली हौली हौली हौली भोग पै गया। उही फटिया चोला, पैरां विच जोड़ा भी नहीं होना, नौकर चाकर भी सारे दौड़ गए, हाथी घोड़े भी विक गए, महल भी विक गए, माड़ियां भी विक गईयां, सब कुछ विक गया, हाथ विच ठूठा फड़िया होया, फिर उत्थे ही आ गया, मेरे मौला मैनू एक वापस कर दे। बोलो श्री, फिर आवाज आई, आखण लगे फकीर साई जा, हुण भुखा नहीं रहिंदा तू, क्योंकि मेरा नाम जपया, मेरे नाल जुड़िया, मेरी बंदगी कीती है, तू भुखा नहीं रहिंदा, लेकिन वो एक हुण होर कोई लै गया है।